मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर

1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के द रियल रेडियो 107 एफएम रेनबो पर ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ हाजिर है आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुलक्षणा पर्वत, जो तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती है, खैर मकदम करती है, वेलकम करती है उसी शो में जिसका नाम है नॉन स्टॉप गपशप। और रहूंगी आपके साथ इस सफर में 11 बजे तक, यानी कि एक घंटा का ये सफर हमारे और आपके बीच रहेगा और हम सब मिलकर ये सफर तय करेंगे। और इस सफर में एक विषय भी रहेगा और वो विषय वाकई में, मतलब मैं क्या कहूँ, हर किसी के लिए, हर शख्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है सेल्फ डेट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेल्फ डेट क्या है। आप में से बहुत जन बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, आप समझते होंगे कि सेल्फ डेट क्या है, या फिर आप कह ले मी टाइम। मी टाइम भी जो है वो आप सेल्फ डेट कहें या मी टाइम, दोनों ही क्वालिटी टाइम है, वाकई में अ ब्यूटिफुल क्वालिटी टाइम जो आप खुद के साथ अकेले में स्पेंड करते हैं। अब सोचेंगे कि अकेले में स्पेंड करते हैं मींस आप करते क्या हो। अजी करते क्या हो, दिल तो बहुत कुछ चाहता है कि हम अकेले में करें, है ना। यानी कि कई लोगों के हॉबीज होते हैं जो भाग दौड़ की जिंदगी के वजह से नहीं कर पाते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना चाहते हैं, बहुत ज्यादा खुश रखना चाहते हैं, तो खुद के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए ना। कभी कभार ऐसा करना बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए कि महीने में एक दिन तो निकाल सकते हो अपने लिए, या दो दिन निकालो और वो करो जो आपका दिल चाहे, जिसमें साथ में कोई ना हो, और अगर हो तो वो आपका शौक हो, आपकी इच्छा हो, आपकी डिजायर हो, आपका विश हो।

स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 10:13 और इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका ही पसंदीदा शो नॉन स्टॉप गपशप विद योर आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत। और ऐसा है कि आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो हम सब के लिए अपने जीवन में बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइफ में मी टाइम, खुद के लिए समय और सेल्फ डेट, कहें खुद को डेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके आत्मसम्मान, मानसिक शांति और खुद के साथ रिश्ते को मजबूत करते हैं। ये बाहरी शोर और व्यस्तताओं से ब्रेक देकर आपको अपने वास्तविक लक्ष्यों और मन पसंद जो है काम करना चाहते हैं उसके लिए आप क्वालिटी टाइम निकालेंगे, यानी कि जो काम आपको पसंद आता है, जहां घूमना पसंद आता है और वो भी अकेले में। अगर जैसे कि कोई फिल्म देखने जानी हो, आपकी मनपसंद फिल्म हो, तो यू कैन गो ऑन अ डेट, सेल्फ डेट, मूवी का आनंद उठा सकते हैं। कभी कोई आपका फेवरेट कुछ खाना हो तो उसके लिए भी निकल पड़ो ना, क्यों इंतजार करते हो किसी साथी के, किसी दोस्त का, बस निकलो और पूरी दुनिया की खुशियों को मुट्ठी में बांधकर अपने साथ घर ले आओ। और अब अकेला अगला गाना आप सभी के लिए कपूर एंड सन से बुद्धू सा मन, अरमान मलिक और अमाल मलिक के संग की आवाज में।

ऐसा है दोस्तों, इसी बीच श्याम बाजार से रंजना मुखर्जी ने फोन किया था और उन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत मन करता है कि मैं खुद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं, मेरा भी कोई मी टाइम हो, लेकिन शादीशुदा हूं, नौकरी करती हूं, खुद के लिए समय ही नहीं मिलता। तो हमने पूछा, अजी कभी तो समय मिलता होगा, तो उन्होंने कहा हाँ मिलता है, सिर्फ रात को 11 बजे से लेके 12 बजे तक, क्योंकि सारा दिन काम में लगी रहती हूँ, बाहर का काम, घर का काम, और समझ सकते हो कि अगर शादीशुदा है तो फिर घर की जिम्मेदारी है पूरे कंधे पर। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए, एक घंटा मुझे मिलता है रात को 11 बजे से 12 बजे। तो मैंने पूछा उस वक्त आप क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, और सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो कहा कि हनुमान चालीसा जो है मैं हर रोज़ पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बेहद खुशी मिलती है, और उसके अलावा जो है मैं कुछ अगर मेरे मनपसंद के गाने हैं वो भी मैं सुनती हूँ, सॉफ्ट म्यूज़िक, लाइट म्यूज़िक, और रोमांटिक गाने सुनना पसंद है तो वो भी सुनती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब ये एक कोशिश होनी चाहिए अपने अंदर कि 24 घंटे में से कहीं कुछ लम्हा खुद के लिए जी ले, खुद के साथ जी ले, प्यार से जी ले।

ऐसा है दोस्तों कि ये जो मी टाइम है ये आपके सेल्फ अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है। जब आप अकेले समय बिताते हैं तो आप बिना किसी बाहरी दबाव या राय के अपने विचारों को सुन पाते हैं। इससे आप अपनी ताकत और कमजोरियों को बेहतर तरीके से पहचानते हैं, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, लगातार काम और लोगों के बीच रहने से नर्वस सिस्टम थक जाता है।

अकेले समय बिताना सॉलिट्यूड में तनाव को कम करने और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में मदद करता है। इंडिपेंडेंस की भी बात है भाई, इंडिपेंडेंस की यानी कि आत्मनिर्भरता की। सेल्फ डेट आपको सिखाती है कि अपनी खुशी के लिए आपको दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आप दूसरों के हाँ का इंतजार किए बिना अपनी पसंदीदा जगहों पर जा सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि प्रीता दास ने नरेंद्रपुर से फोन किया था और उन्होंने कहा कि देखिए मेरे लिए सेल्फ डेट बहुत मायने रखता है और मैं मतलब अभी यंग हूं और अब से ही मैं सीख ली हूं कि जिंदगी चाहे जितनी लंबी हो लेकिन मुझे सेल्फ डेट पे जाना ही जाना है या फिर मी टाइम निकालना ही निकालना है। आखिर मी टाइम में मैंने पूछा करती क्या है, तो उन्होंने कहा मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, बेहद पसंद है, तो मैं नई नई किताबें पढ़ती हूँ और अलग से अपना समय निकालती हूँ। ये नहीं कि चार लोग पास में हो और मुझे डिस्टर्ब करें, ये बिल्कुल पसंद नहीं। पेंटिंग करना उन्हें बहुत पसंद है और आप जानते ही होंगे कि कलाकार जो होते हैं ना वो मतलब समय निकाल ही लेते हैं, क्रिएटिव माइंड वाले होते हैं ना। और इसी के साथ मतलब उनका ये भी कहना था कि उन्हें कुकिंग करना अच्छा लगता है और डांसिंग में भी उनका बहुत शौक है। तो फिर वो समय निकालती हैं सेल्फ डेट और खुद के लिए अपनी खुशियों को बढ़ाने के लिए, उसको और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने के लिए डांसिंग करती हैं, कुकिंग करती हैं, रीडिंग करती हैं, पेंटिंग करती हैं। और इसी के साथ बता दूं कि शुभोदीप दे ने श्याम नगर से फोन किया था नॉर्थ 24 परगना से और उन्होंने कहा कि मुझे तो अकेले शॉपिंग पे जाना बहुत अच्छा लगता है, तो कभी कभार मैं खुद के लिए सारा दिन छुट्टी लेता हूँ, यानी कि जो भी काम है सब बंद करके और निकलता हूँ शॉपिंग पे, और कभी कभार मुझे सेल्फ डेट पर अच्छे प्रोग्राम फंक्शंस देखना बहुत पसंद है। तो इस तरीके से वो जो है समय निकालते हैं खुद के लिए और जीना चाहते हैं हर एक लम्हा को खुशी के साथ। अगला गीत आप सभी के लिए फिल्म रॉय से चिट्टिया कलाइयां वे, मीत ब्रदर्स अनजान और कनिका कपूर की आवाज़ में।

0: स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 10:36:32 और फिलहाल हमारे टेलीफोन लाइन पे कोई हाजिर है, देखते हैं कौन है। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार मैम।
0: कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम, मेरा नाम दिगंबर गिरी हुआ और हम पार्क स्ट्रीट से बोल रहे हैं।
0: दिगंबर गिरी पार्क स्ट्रीट से। तो सबसे पहले दिगंबर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में। और जैसा कि आपने सुना है होगा कार्यक्रम सुनते सुनते कि आज का जो विषय है वो है सेल्फ डेट। तो आप सेल्फ डेट के बारे में क्या सोचते हैं, क्यों जरूरी है आजकल के भागम भाग के दौर में?
1: ये बहुत जरूरी है मैम, सेल्फ डेट। अपने आप से बातें करने का मौका मिलता है, जानने का मौका मिलता है।
0: और अच्छा, मान लीजिए कि आप अगर कभी सेल्फ डेट पे जाते हैं अकेले, तो फिर क्या करना पसंद करते हैं?
1: अकेले जाते हैं बहुत सारा, मतलब अकेले एंजॉय करते हैं, देखते हैं चीजें, समझते हैं।
0: मतलब शॉपिंग करने जाते हैं, या फिर मूवी देखने जाते हैं, या फिर कोई मनपसंद खाना खाने जाते हैं, या फिर प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं जब आप अकेले निकलते हो? तो
1: ज्यादातर तो शॉपिंग करना ही पसंद करते हैं।
0: तो
1: चलिए,
0: बहुत अच्छा लगा। लेकिन मतलब ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम सेल्फ डेट पर जो है ना, घर पे भी जो है अगर अकेले रहे तो कुछ अपने मनपसंद की चीज करना पसंद करते हैं। तो ऐसा कुछ है जो आप करना पसंद करते हो?
1: घर पे तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, मूवी देख लेते हैं। मूवी देखते हैं।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और फिर कभी समय मिले तो बिल्कुल जुड़िएगा।
1: थैंक यू सो मच मैम।
0: और ऐसा है कि अब अगला गीत आप सभी के लिए, लाइफ इन अ मेट्रो से।

लोगों की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: आज के दिन। आज के दिन सेगमेंट में भारतीय और विश्व इतिहास में 25 जून का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। भारत के लिए ये दिन मुख्य रूप से 1975 में लगे आपातकाल और 1983 में क्रिकेट विश्व कप में मिली ऐतिहासिक जीत के लिए याद किया जाता है। आज के दिन एक चुटकी नुस्खे। एक चुटकी नुस्खे में आज मैं यही कहना चाहूंगी कि अक्सर लोग कहते हैं कि रात को मुझे अच्छी नींद नहीं आती, तो अगर अच्छी नींद नहीं आती है तो आप खुद के लिए 5-10 मिनट निकालो ना। 24 घंटे में से 5-10 मिनट निकालना कौन सी बड़ी बात है। सोने से पहले अगर थोड़ा सा आप मस्टर्ड ऑयल ले, सरसों का तेल ले और अपने दोनों तलवे पर अगर खुद से ही थोड़ी सी मालिश कर ले, तो उसके बाद जो लोग रेगुलर स्लीपिंग पिल्स लेते हैं ना, उनको स्लीपिंग पिल्स को कहना पड़ेगा उड़नचू, डिलीट करना पड़ेगा अपने लाइफ से। क्योंकि अगर आप रोज अपने तलवे की मसाज करते हैं अपने हाथों से सरसों तेल से, और अगर वो थोड़ा तेल गुनगुना हो ना, थोड़ा सा हल्का गर्म हो, तो फिर वाकई में इट वर्क्स लाइक वंडर। और वाकई आप अगर एक दो दिन लगाएंगे तो महसूस करेंगे कि आपको बहुत गहरी नींद आएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी, और जब सुबह उठेंगे ना तो लगेगा कि यू आर फुल ऑफ एनर्जी।
1: चुटकी नुस्खे।

0: खुद का खुद से मिलन जब होता है तो उसे कहते हैं सेल्फ डेट, सोलो टाइम। और ऐसा है कि इसी विषय से संबंधित देखते हैं हमारे टेलीफोन लाइन पे कोई जुड़े हैं, उन्हें क्या कहना है इस संबंध में। हेलो, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं सियावर राय बोल रहा हूँ, सुलक्षणा जी। मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ शहर से।
0: चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका सियावर राय जी कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में। और ऐसा है कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का मिलन हो गया नॉनस्टॉप गपशप के जरिए। और आप ये बताइए कि आपके क्या विचार हैं सेल्फ डेट से संबंधित।
1: सेल्फ डेट तो एक बहुत अच्छी बात है, और मैं तो ये मानता हूँ गालिब के शब्दों में, मन को बहलाने का ख्याल अच्छा है गालिब, या इसलिए कि हमेशा अकेलेपन से जूझने से अच्छा है कि मनुष्य अपने आप यह निश्चय करे कि कोई साथी नहीं हुआ तो क्या हुआ, जो हम इस बात का शौक क्यों पालें कि कोई साथ में रहेगा तभी हम अपने मन की चीजों को कर पाएंगे।

0: इसलिए कभी कभार अकेले भी निकल जाना चाहिए डेटिंग कर, जो जैसा कि हम सोचते हैं मार्केटिंग के बारे में, कोई मेरे लिए ऐसी मार्केटिंग कर दे वैसी मार्केटिंग कर दे, हम खुद क्यों नहीं अकेलेपन से निजात पाने के लिए उठें और अच्छा निश्चय करके जाएं और अपनी मन चाही वस्तुओं को स्वयं अपने आप खरीदें। ठीक उसी प्रकार जैसे हम पूजा में बैठते हैं और सेल्फ सेलिब्रेट करते हैं, एकदम इर्द गिर्द चारों ओर लोगों से खचाखच भरे हुए हैं, तब भी हम अकेले ही अपने आप मग्न रहते हैं भगवान के सामने। ठीक दुनिया से दूर दुनिया में रह करके भी इसी प्रकार हमें किसी इंटीमेट साथी की सब समय जरूरत नहीं पड़ सकती। और इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अकेलेपन से निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका है।
1: सिर्फ अकेलेपन से निजात पाने का नहीं है, ऐसा है सर, मैं आपको टोकना चाहूंगी कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप परिवार के बीच हैं और हमेशा मतलब दूसरों के लिए करते हैं कि घर वालों के लिए करे, भाई के लिए करे, बहन के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, तो कभी खुद के लिए क्यों ना जी ले, है ना। ये मतलब एक हाँ, ये जरूरी नहीं कि अगर कोई बंदा अकेला हो या कोई बंदी अकेली हो तो उसके लिए सेल्फ डेट इम्पोर्टेंट है। सेल्फ डेट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, क्योंकि कभी ना कभी आपको महसूस होता है।
0: मैं भी ऐसा ही करता हूँ।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप भी ऐसा करते हो, और हमेशा करते रहिए और स्वस्थ रहिए, और जब समय मिले तो कार्यक्रम में बिल्कुल शामिल होइए। बहुत बहुत धन्यवाद श्यावर राय जी जुड़ने के लिए। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा है दोस्तों कि स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 10:56 और अब बस 4 मिनट शेष बचे हैं। इसमें यही कहूंगी कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और चारों तरफ खुशियों के फूल बिखेरते रहिए। और चलते चलते क्यों ना आपको सुना दूं, रुक जाओ दिल दीवाने, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म से हमने इस गीत को लिया है। उदित नारायण की आवाज में इस गीत को सुनेंगे और कहीं ना कहीं आप भी अपने भाग दौड़ वाले जिंदगी में कुछ पल रुक कर खुद के साथ सेलिब्रेट करो ना, बड़ा मजा आएगा। और चलते चलते आप सभी को यही कहूंगी, आपका दिन मंगलमय हो। तो सुलक्षणा की तरफ से टाटा बाय बाय, हैव अ फैंटा फैबुलस डे।

बहुत स्वागत है। 3:03 समय हो गया और बॉलीवुड मसालेदार न्यूज 3 का तड़का लेकर मैं बाबिया हाजिर हो चुकी हूँ आप सभी के साथ। जानेंगे इस हफ्ते बॉलीवुड की कुछ दिलचस्प बातों के बारे में और साथ ही साथ जबरदस्त गाने तो रहेंगे। तो चलिए, बाहर बारिश हो रही है और ऐसे में अगर जबरदस्त गाने से इनका तड़का की शुरुआत की जाए तो फिर बात तो बन ही जाए।

0: লিসানা, আমাকে খুব জলদি কিছু জিনিস পাঠাতে হবে, কোনো সুপার ফাস্ট অপশন আছে নাকি?
1: আরে ভাই একদম, ইন্ডিয়া পোস্ট নিয়ে এসেছে 24 স্পিড পোস্ট, মানে পরের দিনই নিশ্চিত ডেলিভারি।
0: তাই নাকি? মানে দরকারি ডকুমেন্ট থেকে পার্সেল বা যে কোনো জরুরি জিনিস সবকিছু এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে?
1: আরে হ্যাঁ ভাই, রয়েছে রিয়েল টাইম ট্র্যাকিং, পকেট ফ্রেন্ডলি রেট, আর সবচেয়ে জরুরি ওটিপি ভিত্তিক নিরাপদ ডেলিভারি। শুধু ভরসা রাখো ইন্ডিয়া পোস্টের উপর।
2: বিশদে জানতে আপনার কাছের পোস্ট অফিসে যোগাযোগ করুন বা ভিজিট করুন indiapost.gov.in এ।
3: তো চলিয়ে দিন কে দড়কে কি পেহলে দড়কে সে শুরুআত করতে হ্যাঁ। बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते कई फिल्मों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। जहां कुछ फिल्मों की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है, वहीं कुछ फिल्में लगातार दर्शकों का प्यार भी बटोर रही हैं। मंगलवार के आंकड़ों की में सबसे ज्यादा चर्चा रही कॉकटेल 2 और माँ इंडी बंगारम की। शाहिद कपूर, कृति शैनन, रश्मिका मंदाना स्टारर कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने रिलीज के पांचवें दिन 6,65,00,000 रुपए का कारोबार किया, जो सोमवार के कलेक्शन से भी थोड़ा बेहतर है। वीकेंड के बाद भी फिल्म की पकड़ मजबूत बनी हुई है। इसी के साथ फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 60,90,00,000 रुपए तक पहुंच गया है। ट्रेंड पंडितों की माने तो उनका मानना है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो फिल्म जल्द ही 100 करोड़ क्लब की ओर बढ़ सकती है। वहीं सामंथा रुथ प्रभु की फिल्मी माँ एंटी बंगारम भी दर्शकों का भरोसा जीतने में सफल रही। फिल्म ने पांचवें दिन 3,50,00,000 रुपए की कमाई की। हालांकि यह आंकड़ा सोमवार के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन दर्शकों के बीच फिल्म की लोकप्रियता बरकरार है। अब तक फिल्म का कुल कलेक्शन 30,70,00,000 रुपए हो चुके हैं और आने वाले दिनों में इसके और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद भी जताई जा रही है। उधर मैं वापस आऊंगा ने दूसरे हफ्ते में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। फिल्म की कमाई भले ही शुरुआती दिनों जैसी न रही हो, लेकिन इसकी स्थिरता ये साबित कर रही है कि दर्शक अब भी इसे पसंद कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस वक्त बॉक्स ऑफिस में रेस में कॉकटेल 2 सबसे आगे नजर आ रही है, जबकि माँ एंटी बंगारम भी मजबूती से अपनी जगह

बनाए हुए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कौन सी फिल्म दर्शकों के दिल और टिकट खिड़की दोनों पर राज करने वाली है। फिलहाल पहले तड़के के बाद बारी है हमारे ये दूसरे गाने के। रुजीत सिंह शाश्वत सचदेव के आवाज में है हमारा दूसरा गाना और फिल्म का नाम है मेट्रो इन दिनों।

0: दोस्तों अब स्टूडियो की घड़ी में बज रहा है 3:11 या 3:12 एग्जैक्टली। अब चलिए आगे बढ़ते हुए थोड़ा जान लेते हैं परियोजना प्रस्तुति के बारे में, बात कर लेते हैं।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
0: नमस्कार दोस्तों, परियोजना प्रस्तुति के एक नए अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा कि हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां जिन पर सदियों से लोगों का भरोसा रहा है, आज भी हमारी सेहत को बेहतर बनाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन्हीं पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने शुरू किया राष्ट्रीय आयुष मिशन। आयुष यानी आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी। राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी ताकि देश के हर कोने तक इन चिकित्सा पद्धतियों की पहुंच को मजबूत बनाया जा सके। इस मिशन के तहत आयुष अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का विकास भी किया जा रहा है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं और लोगों को प्राकृतिक तथा पारंपरिक उपचार के विकल्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में

0: तनाव, अनियमित दिनचर्या और बढ़ती स्वास्थ्य समस्या आम हो गई है। ऐसे में योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी पद्धतियां न केवल बीमारियों के उपचार में मदद करती हैं, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करती है। राष्ट्रीय आयुष मिशन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है औषधियां पौधों को बढ़ावा देना। इससे न केवल पारंपरिक चिकित्सा को मजबूती मिलती है, बल्कि किसानों के लिए भी नए अवसर पैदा होते हैं। तो आइए अपनी समृद्ध चिकित्सा विरासत को जानें, अपनाएं और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। राष्ट्रीय आयुष मिशन इसी सोच को आगे बढ़ाने का सशक्त प्रयास भी कर रहा है। ये थी परियोजना प्रस्तुति।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: इस छोटे से ब्रेक के बाद इनका तड़का में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से, और जहां बातें हो रही हैं बॉलीवुड के मसालेदार न्यूज के बारे में। चलिए अब बात करते हैं पद्म अवार्ड्स के बारे में। बात कर लेते हैं, नई दिल्ली के भव्य राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म अवार्ड्स 2026 के दूसरे सिविल इवेंट्स समारोह में देश की कई प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न देशों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में प्रधानमंत्री भी, गृह मंत्री भी मौजूद थे, और इस अवसर पर कुल 65 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सम्मान शामिल है। सिनेमा और संगीत जगत से कई नामचीन हस्तियों को भी इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ममूट्टी को भारतीय फिल्म उद्योग में उनके अतुलनीय योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 5 दशकों से अधिक लंबे करियर में उन्होंने अनगिनत यादगार किरदार निभाए, भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया। ये सम्मान उनके शानदार अभिनय सफर और एक और स्वर्णिम अध्याय को माना जा रहा है। वहीं सुरों की दुनिया की मशहूर गायिका अलका याग्निक को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनके मधुर आवाज ने हिंदी सिनेमा को कई सदाबहार गीत दिए जो आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे हैं। वहीं अभिनेता आर माधवन को भारतीय सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान और शानदार अभिनय के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया। रोमांस से लेकर गंभीर और चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं तक उन्होंने हर शैली में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इसके अलावा दिग्गज अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में उनके दशकों लंबे योगदान को याद करते हुए ये सम्मान प्रदान किया गया। उनके परिवार की ओर से ये पुरस्कार स्वीकार किया गया। सारा भाई वर्सेस सारा भाई, जाने भी दो यारों और मैं हूं ना जैसे प्रोजेक्ट्स में उनके निभाए गए किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में खास जगह रखते हैं। फिल्म और संगीत जगत के इन सितारों को मिले इस सम्मान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कला और मनोरंजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकार देश के अमूल्य धरोहर हैं। इसी बात पर चलिए बढ़ते हैं आगे और सुन लेते हैं हमारा अगला गाना।

दोस्तों 3:30 बजे से है एनसीईआरटी का प्रोग्राम, तो चलिए फटाफट, समय कम रह गया, तो अगले तड़के की ओर सीधे भाग चलते हैं। ओटीटी पर तहलका मचाने वाले मिर्जापुर अब बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार है। जी हाँ, मेकर्स ने मिर्जापुर द मूवी का नया पोस्टर जारी करते हुए टीजर रिलीज की तारीख का भी ऐलान कर दिया। फैंस का इंतजार अब खत्म होने वाला है क्योंकि आज ही दोपहर 12 बजे का टीजर रिलीज किया जाएगा, ऐसा बताया गया। पोस्टर सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई और दर्शक बेसब्री से फिल्म की पहली झलक का इंतजार कर रहे हैं। खास बात यह है कि मिर्जापुर द मूवी केवल हिंदी और तेलुगु भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया, जबकि इसकी कहानी और पटकथा पुनीत कृष्णा ने लिखी है। वहीं रितेश सिंधवानी और फरहान अख्तर इस बहु प्रतीक्षित फिल्म के निर्माता हैं। याद दिला दें कि मिर्जापुर के पहले सीजन से ही अकालीन भैया गुड्डू पंडित पंकज त्रिपाठी के दमदार अंदाज और मिर्जापुर की सत्ता की लड़ाई ने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था। अब यही कहानी जब बड़े पर्दे पर पहुंचेगी तो एक्शन ड्रामा और रोमांच का स्तर और भी ऊंचा होने की उम्मीद है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि मिर्जापुर की गद्दी की जंग अब घरों में छोड़ने वाली है और कल आने वाला यानी कि आज रिलीज हुआ टीजर इस धमाकेदार सफर की पहली झलक लेकर आ चुका है। फटाफट नजर डाल लेते हैं हमारे अगले बॉलीवुड तड़के की ओर। अक्षय कुमार की बहु प्रतीक्षित मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल इन दिनों जबरदस्त चर्चा में है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म के ट्रेलर ने दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। अब फिल्म की एडवांस बुकिंग की शुरुआती आंकड़े भी सामने आ गए, जो मेकर्स के लिए अच्छी खबर लेकर आए हैं।

के अनुसार 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही वेलकम टू द जंगल की एडवांस बुकिंग शुरू होते ही दर्शकों ने शानदार प्रतिक्रिया दी। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन के लिए 6,000 से ज्यादा टिकट बेचकर 16 लाख रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। वहीं ब्लॉक सीट्स के साथ ये आंकड़ा करीब 48 लाख रुपए तक पहुंच गया है। फिल्म के रिलीज से पहले ही मिले इस रिस्पॉन्स ने संकेत दिए हैं कि ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर अच्छी भीड़ देखने को मिल सकती है। दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए मेकर्स ने एक खास रणनीति भी अपनाई है। 25 जून की शाम को रिलीज से एक दिन पहले पेड प्रीव्यू शोज आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे फिल्म को शुरुआती बढ़त मिलने की उम्मीद है। कॉमेडी, मनोरंजन और बड़े सितारों की से सजी ये फिल्म केवल वेलकम फ्रेंचाइज की अगली कड़ी है, जिसका फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अब सभी की निगाहें 26 जून पर टिकी हैं, जब ये फिल्म बड़े पर्दे पर दर्शकों का मनोरंजन करने पहुंचेगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 26 जून को वेलकम टू द जंगल दर्शकों को हंसी और मनोरंजन के सफर पर ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

तो चलिए चलते चलते हम आज के दिन के तड़के के अंक के आखिरी गीत तक पहुंच चुके हैं, जो है जावेद अली के आवाज़ में। बाहर बारिश हो रही है जबरदस्त, तो साथ ही साथ एक रोमांटिक गाना तो बनता है। राज थ्री से सुन लेते हैं जावेद अली की आवाज़ में, दीवाना कर रहा है। उसके बाद शुरुआत होगी एनसीईआरटी के प्रोग्राम की, आप सुनेंगे सीधे स्टूडियो से उसका प्रसारण। और फिलहाल जावेद अली की आवाज में छोड़े जा रही हूँ, दीवाना कर रहा है। बने रहिए 107 एफएम रेनबो है ये। मिलूंगी ठीक 7 बजे वापस लेकर छाया लोग, नजारा, फिल्मों का और ढेर सारी बातें होंगी, फोन कॉल्स पर बातें होंगी और साथ ही साथ गाने तो रहेंगे ही। तब तक के लिए नमस्कार, और 5:20 पर सीधे मुलाकात होगी एफएम रेनबो पर, चाय गोल्ड पर, माफ कीजिएगा, चाय एंड क्लासिक्स के साथ।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत, नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया, शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू, नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIETNCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधे का के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधे का जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
2: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि, भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
3: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
2: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुईं, जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
3: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में

0: मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजुभाई बधेका।
1: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजुभाई बधेका जी की, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
0: गिजुभाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजुभाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
1: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। बिजू, तुम सुनाओ।
1: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
0: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता। खड़े होकर सुनाओ।
1: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
0: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
1: जी जी जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
0: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ, सामने।
1: जी।
0: कान खोल कर सुन लो तुम सब। यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
2: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
3: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
4: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा। समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।

0: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
1: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
0: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
1: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
0: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
1: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा। तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
2: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
1: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
0: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
3: शिक्षक बंधुओं, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ। वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
1: अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जीतेश जी नमस्कार।
4: नमस्कार।
1: तो जीतेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
4: जी,
1: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं।
4: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियां हैं
1: जी,
4: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर

0: रहा हूँ उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं।
1: जी।
0: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है।
1: जी, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है?
0: जी और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
1: युगल और सहभागिता पद्धति।
0: जी, इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
1: जी,
0: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: जी, इसके अलावा एक पद्धति और है।
1: हाँ हाँ बताइए।
0: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
1: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
0: जी, इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
1: अच्छा।
0: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
1: जी,
0: वो बहुत ही शानदार है।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जीतेश कुमार जी। तो जीतेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
2: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
1: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
2: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
1: गिजू भाई के अनुसार
3: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
1: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
2: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
5: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: नमस्कार दोस्तों, 107 FM रेनबो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त पापिया और लेकर आ गई हूं छाया लोक, और आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। और अभी आज है थर्सडे का दिन, तो आज सुनेंगे आप
2: नजारा फिल्मों का।
1: दोस्तों, रात की ये आदत बड़ी दिलचस्प है। जैसे जैसे दुनिया शांत हो जाती है, वैसे वैसे चीजें साफ भी होने लगती है। दिन में जो बातें भीड़ में खो जाती है, रात उन्हें अलग करके सामने रख देती है। और अगर ध्यान से सुना जाए तो कहानियां भी इसी समय अपना असली रूप दिखा भी देती है। हम अक्सर फिल्मों को उनके चेहरों से पहचानते हैं, किरदार, अभिनेता, दृश्य, लेकिन अगर थोड़ा रुक कर सोचा जाए तो सवाल उठता है कि क्या यही पूरी कहानी है, या इसके पीछे एक और कहानी चल रही होती है। वो कहानी जिसे हम देख नहीं पाते, पर जो हम हर पल हमारे सामने मौजूद होती है। सिनेमा की सबसे दिलचस्प बात तो यही है कि जितना दिखता है उतना ही छुपाता भी है, और जो दिख रहा होता है वो एक तैयार रूप होता है, संवारा हुआ, सजा हुआ, एक तय लय में चलता हुआ। लेकिन उस समय लय तक पहुंचने के लिए कितने हाथ काम कर चुके होते हैं हम शायद ही कभी जानते हैं। एक फिल्म कभी भी एक ही इंसान की बनाई हुई चीज नहीं होती, एक साझा प्रयास होता है, जहां हर व्यक्ति अपनी समझ, अपने हुनर और अपने अनुभव का एक हिस्सा उसमें जोड़ता रहता है। फिलहाल चलिए सुनते हैं, बातें होंगी ऐसे ही फिल्मों में जो हमारे छुपे हुए हीरोज, जो फिल्में बनाते हुए जिनके बारे में हम शायद जान भी नहीं पाते, उनके बारे में बात होगी। और आज नज़ारा फिल्मों का, मैं फिलहाल के लिए चलिए सुन लेते हैं हमारा पहला गाना।

0: तो दोस्तों, सबसे पहले फिल्मों में कहानी का जन्म होता है। ये जन्म बहुत शोर में नहीं होता, ये अक्सर एकांत में होता है, जहां एक विचार धीरे धीरे आकार लेता है। ये विचार कभी किसी घटना से आता है, कभी किसी स्मृति से, और कभी सिर्फ एक सवाल से। अगर ऐसा हो जाए तो यहीं से एक लेखक का काम शुरू होता है। लेखक सिर्फ घटनाएं नहीं लिखता, ये भावनाएं गढ़ता है और ये तय करता है कि कौन सा किरदार कैसा सोचेगा, कैसे बोलेगा और कब चुप रहेगा। ये काम जितना सरल दिखता है उतना होता नहीं है, क्योंकि असली चुनौती ये नहीं होती कि कहानी लिखी जाए, बल्कि ये होती है कि वो सच्ची लगे। एक किरदार तभी असर करता है जब वो बनावटी ना लगे, और इसके लिए लेखक को लोगों को समझना पड़ता है। उनकी आदतें, उनकी प्रतिक्रियाएं, उनकी खुशियां, उनका डर, ये सब देखकर, समझकर और फिर उसे शब्दों में ढालकर एक ऐसा संसार बनाना पड़ता है जिसे देखकर लोग कहें कि हाँ, ऐसा हो सकता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं अगले गाने के साथ।
1: जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

लेकिन दोस्तों, कहानीकार के लेखन से ही सिर्फ कहानी यहीं पूरी नहीं होती है, क्योंकि जो लिखा गया वो सिर्फ एक आधार होता है। जब वही कहानी फिल्म बनने लगती है तो उसे कई और स्तरों से गुजरना पड़ता है। स्क्रीन प्ले यानी कहानी को इस तरह ढालना कि वो पर्दे पर दिखाई दे सके, यहाँ एक महत्वपूर्ण बदलाव होता है। किताब में जो बातें लंबे वर्णन में कही जा सकती है, उन्हें फिल्म में कम समय में दिखाना पड़ता है। इसलिए कई बार कहानी को छोटा करना पड़ता है, कई बार बदलना पड़ता है और कई बार कुछ हिस्सों को पूरी तरह घटा देना पड़ता है। ये निर्णय आसान नहीं होता, क्योंकि हर बदलाव कहानी के असर को बदल सकता है। लेकिन यही वो जगह है जहां अनुभव काम आता है, ये समझ कि क्या जरूरी है और क्या छोड़ा जा सकता है। यही फिल्म की लय तय करती है। और आता है शूटिंग का चरण, वो हिस्सा जिसे हम अक्सर मेकिंग के नाम से जानते हैं। सुनते हैं हमारा अगला गीत।

दोस्तों, लेखक की लिखी गई कहानी यही पूरी नहीं होती, क्योंकि जो लिखा गया वो सिर्फ एक आधार होता है। जब वही कहानी फिल्म बनने लगती है तो उसे कई और स्तरों से गुजरना पड़ता है। स्क्रीन प्ले यानी कहानी को इस तरह ढालना कि वो पर्दे पर दिखाई दे सके, यह एक महत्वपूर्ण बदलाव होता है। किताब में जो बातें लंबे वर्णन में कही जाती हैं वो फिल्म में कम समय में दिखाना पड़ता है, इसलिए कई बार कहानी को छोटा करना पड़ता है, कई बार बदलना पड़ता है, कई बार कुछ अच्छे हिस्सों को पूरी तरह से हटा देना पड़ता है। ये निर्णय आसान नहीं होता, क्योंकि हर बदलाव कहानी के असर को बदल सकता है, लेकिन यही वो जगह है जहाँ अनुभव काम आता है, ये समझ कि क्या जरूरी है, क्या छोड़ा जा सकता है, और फिर यही फिल्म का लय भी तय करती है। यही आता है शूटिंग का चरण, जिसे मेकिंग के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके भीतर कितनी बारीकियां छुपी होती है ये कम ही लोगों को पता है। एक छोटा सा दृश्य जिसे हम स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए देखते हैं, उसे शूट करने में कई घंटे लग जाते हैं। कभी रोशनी सही नहीं होती, कभी आवाज में दिक्कत आ जाती है, कभी एक छोटा सा हाव भाव फिर से करना पड़ता है, और ये सब इसलिए ताकि जब वो दृश्य आपके सामने आए तो वो बिल्कुल सहज लगे। सहजता दरअसल बहुत मेहनत का परिणाम होता है। इसके बाद कहानी एक बार फिर बिखर जाती है, सैकड़ों शॉट्स, अलग अलग टेक्स, विभिन्न साइड से ली गई तस्वीरें, सब कुछ एक जगह इकट्ठा होता है। अब सवाल ये होता है कि सबको जोड़कर ये सही कहानी बनाए कैसे जाए। तो यहीं पे आते हैं संपादक, बातें करेंगे संपादना के बारे में भी, पर बैक टू बैक चलिए तो गाने सुन लेते हैं। पहला किशोर कुमार की आवाज में, दूसरा लखी अली की आवाज में।

तो नजारा फिल्मों का मैं बात हो रही थी भाई संपादना के बारे में, एक फिल्म बनाने में क्या क्या तकलीफें आती है, कौन कौन जुड़ा रहता है, इसके बारे में आज बातें हो रही है नजारा फिल्मों का। तो जब बात हो रही थी कि ढेर सारी तस्वीरें और शॉट्स के साथ जब सब कुछ एक जगह इकट्ठा होता है तो इसे जोड़कर कहानी कौन बनाता है, यहीं पर संपादन का काम शुरू होता है। संपादन सिर्फ जोड़ने का काम नहीं, ये चयन का काम है, क्या रखा जाए, क्या हटाया जाए और क्या थोड़ा बदला जाए, इन फैसलों पर पूरी फिल्म का असर निर्भर करता है। एक सेकंड का अंतर भी कभी कभी बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। अगर कोई दृश्य थोड़ा लंबा हो जाए तो वो बोझिल लगता है, और अगर जल्दी ख़त्म हो जाए तो हो सकता है उसका असर अधूरा रह सकता है। इस संतुलन को बनाए रखना यही असली कला है, उसके साथ ही ध्वनि का संसार भी तैयार हो जाता है। फिल्म में जो आवाज़ें हम सुनते हैं वे अक्सर सीधे रिकॉर्ड नहीं होती, उन्हें बाद में जोड़ा जाता है ताकि वो और साफ और प्रभावी लगे। कदमों की आहट, दरवाजे की आवाज़, हवा की सरसराहट, इन सबको अलग से तैयार किया जाता है, और ये काम इतना बारीक होता है कि हमें कभी एहसास ही नहीं होता कि हम कुछ जोड़ा हुआ सुन रहे हैं। हमें बस लगता है कि ये सब स्वाभाविक है, यही उसकी सफलता है। इसी तरह पृष्ठभूमि संगीत भी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बात करेंगे इस बारे में भी, पर उससे पहले सुन लेंगे नुसरत फतेह अली खान की आवाज़ में अगला गाना।

तो बात हो रही थी दोस्तों पृष्ठभूमि संगीत की, यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक की, जो कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये सीधे सीधे ध्यान नहीं खींचता, लेकिन भावनाओं को दिशा जरूर देता है। किसी दृश्य में हल्का सा संगीत उसे कोमल बना सकता है और तेज धुन उसे तनावपूर्ण बना सकती है। ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव तैयार करते हैं जो सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस भी किया जाता है। फिर आती है दृश्य संरचना, कैमरा कहाँ रखा जाए, किस कोण से शूट किया जाए, रोशनी कैसी हो, ये सारे निर्णय कहानी के अर्थ को प्रभावित करते हैं। एक ही दृश्य अलग अलग तरीके से शूट किया जाए तो उसका असर भी बदल सकता है। यानी कहानी सिर्फ लिखी नहीं जाती, उसे दिखाया भी जाता है, और ये दिखाना भी एक कला है। और इन सब के बीच एक और बात छुपी होती है। क्या होती है वो बात, बताएंगे जरूर, पर उससे पहले सुन लेंगे हमारा अगला गाना।

तो बात कर रहे थे दोस्तों फिल्म की शूटिंग के बारे में और संपादना के बारे में। जी हाँ, तो मैंने बताया कि इतनी सारी चीज़ें, स्क्रीन प्ले, शूटिंग, संपादन, एडिटिंग, इन सब के बीच में एक और बात छुपी होती है और वो है समय। एक फिल्म बनने में महीनों, कभी कभी सालों लग जाते हैं। इतना समय एक ही कहानी पर काम करना, उसे बार बार सुधारना और फिर भी धैर्य बनाए रखना, ये आसान नहीं होता। लेकिन शायद यही वो चीज़ है जो एक साधारण विचार को एक यादगार अनुभव में बदल देती है। और जब अंत में वो फिल्म हमारे सामने आती है तो हम उसे 2-3 घंटे में देख लेते हैं। हमें वो पूरी लगती है, पूर्ण लगती है, लेकिन उस पूर्णता के पीछे कितनी अधूरी कोशिशें रही होंगी, कितनी बार कुछ बदला गया होगा, कितनी बार फिर से शुरू किया होगा, ये सब हमें दिखाई नहीं देता। और शायद यही कारण है कि इन अनदेखे लोगों का महत्व और भी बढ़ जाता है। वो सामने नहीं आते, पर उनके बिना कुछ भी पूरा नहीं होता। और यही है फिल्मों की अनसंग हीरोज। चलिए बैक टू बैक और 2 गाने सुन लिए जाए। बारिश हो रही है बाहर, तो आशकिंग और सशा तिरुपति की आवाज में सुन लेते हैं हाफ गर्लफ्रेंड से बारिश, और उसके बाद अदनान सामी की आवाज में सुन जरा।

तो आज बातें हो रही है नज़ारा फिल्मों का में अनसंग हीरोज़ के बारे में। जी हाँ, फिल्मों के अनसंग हीरोज़ जो गाते नहीं पर उनकी मेहनत ज़रूर गूंजती है, वे दिखते नहीं पर उनका असर हर जगह होता है। और शायद अगर हम अगली बार किसी फिल्म को देखते हुए थोड़ा ठहर जाए तो हमें ये एहसास भी हो कि जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, वो कई लोगों की साझा रचना है, एक ऐसा प्रयास जिसमें हर किसी ने अपना एक हिस्सा दिया और यही सिनेमा को खास भी बनाता है। सब कुछ उसी दौड़ की धड़कन के साथ जुड़ा होता है, लेकिन समय समय कभी स्थिर नहीं रहता, वो बदलता है और अपने साथ हमारी समझ, हमारी

वेदनाएं हमारे देखने के तरीके को भी बदल देता है और यहीं से शुरू होती है कहानी की दूसरी जिंदगी। वो मूल विचार, वही भावनात्मक बीज, लेकिन एक नई मिट्टी में एक नए मौसम के साथ। फिल्मों में ये कई बार हुआ है कि एक ही कथा अलग अलग समय में नए रूप लेकर सामने आई है। कभी किसी उपन्यास का रूप बदलकर, तो कभी किसी लोक कथा और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में ढालकर, और कभी सिर्फ एक पुराने विचार को नई दृष्टि से देखकर। और यही एक दिलचस्प तथ्य है। और अब अगले घंटे में इसी फिल्मों की कहानियों और सिचुएशंस को दोहराने की बात पर बातें होंगी, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद जो न्यूज ब्रेक है 2 मिनट का, उसे जाने से पहले सुन लेंगे हमारा अगला गाना गजेंद्र वर्मा की आवाज में।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: तो एक बार फिर से दूसरे घंटे में स्वागत है आपका, और आप सुन रहे हैं छायालोक के अंतर्गत
3: नजारा फिल्मों का।
2: तो बात हो रही थी फिल्मों की कहानी को दोहराने की, यानी कि एक ही कहानी अलग अलग सिचुएशंस

फिल्मों में ये बहुत बार हुआ है दोस्तों कि एक ही कथा अलग अलग समय में नए रूप लेकर सामने आई है, कभी किसी उपन्यास का रूप बदलकर, कभी किसी लोक कथा या आधुनिक परिप्रेक्ष्य में ढालकर, और कभी सिर्फ एक पुराने विचार को नई दृष्टि से देखकर। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि कहानी को दोबारा बनाना सिर्फ दोहराना नहीं होता, ये एक तरह का पुनर्सृजन होता है। जब एक निर्देशक या लेखक पहले से मौजूद कहानी को उठाता है तो वो उसे ज्यों का त्यों नहीं रख सकता, क्योंकि समय बदल चुका है, दर्शक बदल चुके हैं, उनकी अपेक्षाएं, उनकी समक्ष, उनकी गति, सब कुछ अलग हो चुकी है। इसलिए वो कहानी थोड़ी बदलती है, कभी उसका अंत अलग हो जाता है, कभी उसका दृष्टिकोण अलग हो जाता है। और अभी आप कभी कभी आप अपनी बात खुलकर कहता है तो कभी चुपचाप रहता है। फिलहाल

और कभी कभी कहानियों में यही जो बदलाव है ना, उसको दूसरी जिंदगी देता है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है पता है? उसकी आत्मा को बचाए रखना, क्योंकि अगर मूल भाव खो गया तो कहानी सिर्फ ढांचा बनकर रह जाएगी, और अगर वही भाव नई शैली में जीवित रहा तो वो कहानी फिर से असरदार लगेगी, शायद पहले से भी ज़्यादा। यही कारण है कि कुछ कहानियाँ बार बार कही जाती है और हर बार नहीं लगती है। वे सिर्फ समय के साथ नहीं चलती, वे समय को अपने साथ लेकर चलती है।

अब जरा इस पूरी प्रक्रिया को एक और नजर से देखते हैं। जब कोई कहानी किताब में होती है तो उसका नियंत्रण पाठक के हाथ में होता है। वो अपनी गति से पढ़ता है, चाहे रुकता है, चाहे जहां सोचता है, लेकिन फिल्म में गति तय होती है। दर्शक को उसी लय में चलना पड़ता है जो फिल्म ने तय की है। यही कारण है कि किताब से फिल्म में बदलते समय बहुत कुछ बदलना पड़ता है। लंबे वर्णन छोटे किए जाते हैं, आंतरिक विचारों को, दृश्यों को और संवादों में बदला जाता है। और कई बार जो बात किताब में बहुत प्रभावशाली थी वो फिल्म में उतनी असरदार नहीं लगती, या उसका असर पाने के लिए उसे बिल्कुल नए तरीके से दिखाना पड़ता है। ये काम आसान नहीं, ये एक तरह का अनुवाद है, लेकिन भाषा का नहीं, माध्यम का। और इस अनुवाद में सिर्फ शब्द नहीं, भावनाएं भी बदलती है। रचना के अधिकार और सम्मान की बात भी आती है। किसी कहानी को एक माध्यम से दूसरे में ले जाना ये सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, क्योंकि वो कहानी किसी की सोच से निकली है, किसी के अनुभव से बनी है। और जब उसे नया रूप दिया जाता है तो ये जरूरी होता है कि उसका मूल भाव बिल्कुल सुरक्षित रहे।

अब अगर हम फिर से फिल्मों की ओर लौटे किताबों से, तो एक और बात सामने आती है। कहानी चाहे कितनी भी मजबूत हो, अगर उसे सही तरीके से प्रस्तुत न किया जाए तो उसका असर कम हो सकता है। यही कारण है कि हर स्तर पर सावधानी बरती जाती है। दृश्य, ध्वनि, लय, संवाद, सब कुछ मिलकर एक संतुलन बनाते हैं, और इस संतुलन को बनाए रखना ही असल चुनौती है, क्योंकि यहाँ हर छोटी चीज मायने रखती है। एक गलत ध्वनि, एक अनावश्यक दृश्य या एक असंतुलित लय पूरे अनुभव को प्रभावित कर सकती है। लेकिन जब सब कुछ सही जगह पर होता है तो कहानी सहज लगती है, और यही सहजता उसकी सबसे बड़ी सफलता होती है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नजारा फिल्मों का।
2: तो दोस्तों, आज नजारा फिल्मों का में हमने बात की पहले अनसंग हीरोज के बारे में फिल्मों के, जी हाँ, और पूरे फिल्म बनाने की प्रक्रिया के बारे में बातें कर रहे थे हम। तो दोस्तों, पूरी प्रक्रिया के बारे में हम जब जानते हैं फिल्म कैसे बनते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि सिनेमा सिर्फ एक कला नहीं है, ये एक सामूहिक प्रयास है जहाँ हर व्यक्ति अपना योगदान देता है और अंत में एक साझा अनुभव बनता है। और शायद यही कारण है कि फिल्में हमें जोड़ती है, वे हमें एक साथ हंसाती हैं, एक साथ रुलाती हैं और एक साथ सोचने पर मजबूर करती हैं, क्योंकि उनके पीछे कई लोगों की सोच एक साथ काम कर रही होती है। आज जब हम ये सफर अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक बात और साफ होती है कि कहानियां सिर्फ कहीं नहीं जाती, वे जी जाती हैं और जो उन्हें जीते हैं वे सिर्फ कलाकार नहीं, दर्शक भी होते हैं, आप और मैं।

जब अगली बार आप किसी फिल्म के साथ बैठेंगे तो शायद आप सिर्फ उसे देखेंगे नहीं, आप उसे महसूस भी करेंगे। जी हाँ, और आप उसके पीछे की मेहनत को, उसकी परतों को, उसकी अनदेखी आवाज़ों को सुन पाएंगे। और शायद तभी आपको एहसास होगा कि हर कहानी के पीछे कई कहानियाँ होती हैं, और हर कहानी एक कहानी एक नहीं बल्कि कई जिंदगियाँ होती हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे और सुन लेते हैं हमारा अगला गाना सोनू निगम की आवाज़ में।

अब रात धीरे धीरे समझ रही है दोस्तों, और नई नई कहानियां जो है सिर्फ फिल्मों में नहीं देखने मिलती बल्कि हमारे जहन में भी देखने को मिलती है। और इस सन्नाटे में, इस रात के सन्नाटे में कहानियां फिर से अपने अपने रास्तों पर लौट रही है, लेकिन जाते जाते वो एक बात छोड़ जाती है कि जो दिखता है वो पूरी सच्चाई नहीं होती, और जो नहीं दिखता वो अक्सर सबसे ज्यादा मायने रखती है।

जैसा कि दा कहा दोस्तों कि रात अब धीरे धीरे समझ रही है और इस सन्नाटे में कहानियां फिर से अपने अपने रास्ते पर लौट रही है, लेकिन जाते जाते एक बात छोड़ जाती है कि जो दिखता है वो पूरी सच्चाई नहीं होती और जो नहीं दिखता वही अक्सर सबसे ज्यादा मायने रखती है। और इसी एहसास के साथ अब इजाजत लेती हूँ मैं आप सभी से। कहानियों से रिश्ता बनाए रखिएगा, क्योंकि यही रिश्ता हमें इंसान बनाए रखता है। तो ये था आज का नज़ारा फिल्मों का। जी हाँ, थर्सडे का दिन नज़ारा फिल्मों में हमने बात की अनसंग हीरोज के बारे में, फिल्मों के बारे में, साहित्य के बारे में, कितनी सारी बातें आज हम छेड़ गए। बस सारी बातें क्रक्स ऑफ द मैटर एक ही है कि अगर हम बताएं तो फिल्मों से हमारा जुड़ाव किस तरह से है और किस तरह का लगाव है, यही हमें बताती है। अब जाते जाते बैक टू बैक दो गाने आपके लिए छोड़े जाऊंगी, गजेंद्र वर्मा की आवाज में तेरा घाटा और शंकर एहसान लॉय के आवाज में आसमां के पार। और आज है जबरदस्त मौसम, अभी आज बना हुआ है, बारिश का मौसम है, तो एंजॉय कीजिए फुल ऑन। और फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, कल वापस मिलूंगी, 3 का तड़का से हमारी जर्नी शुरू होगी छाया लोग तक, यानी कल होगा सेलुलॉइड सुपर हिट्स छाया लोग में। फिलहाल के लिए बातें कल वापस होंगी, ढेर सारी बातें होंगी, साथ ही ढेर सारे रिक्वेस्ट और गाने भी होंगे। इसी आशा के साथ मैं वापिया लेती हूँ आप सभी से विदा। गुड नाइट, शुभ खैर, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल वापस। तब तक के लिए 107 FM रेनबो पर आप सुनते रहिए हमारा गाना और हमारे प्रोग्राम्स थोड़ी देर में वापस शुरू होंगे। चलिए जाते जाते आपके लिए ये दोनों गाने।

0: किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थी, न जाने इस दफा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं। और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों पे गीले आंसू चलते हैं।
1: सघन सावन

ये बारिश गुनगुनाती थी, इसी छत की मुंडेरों पर ये बारिश गुनगुनाती थी, इसी छत की मुंडेरों पर ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी।

0: दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के खाली खाने रखे हैं, न कोई खेलने वाला है बाजी और न कोई चाल चलता है।
1: लाख बार उसमें

न दिन होता है अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है।